0: बल बल जाइए, बल बल जाइए।
1: ससा नदी दे कंडे ते बड़ा घोर युद्ध होया, भाई उदय सिंह ने साहबजादा अजीत सिंह ने ऐसी तेग चलाई, दुश्मनों नु भजना पै गईया। ससा बड़ी ठाठा मार दी सी, इस नु पार करना बड़ा औखा सी। ससा दे किनारे ते गुरु महाराज दे सिख संगता ते गुरु महाराज दा परिवार विछड़ गया।

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते।

रुपये दिते सन कि बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। 20 रुपये लेके चल पे, जाना ते सी चूड़काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन, भुखे प्यासे के परमात्मा दर्शन देवेगा, ते जे परमात्मा साडे लई कोई भोजन दा उपराला करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन कीता। देखिया बई एह ते जेड़े साधु हन कईआं दिनां तों भुखे ते प्यासे हन। जेड़े 20 रुपये सन ओह जा करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नूं भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नूं तृप्त कीता।

पैसा पाई गुरुदास जी ने। चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच, ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की होई। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, अमृत सर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हां नूं सतगुरु जाणिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हां ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नूं अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समें विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नूं जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा कि जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे

प्यार नाल, प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरि मंदर दे विच टिका दिता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने जैसे सत मंदर

खाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नो छिलछू है न कोई रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए, फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए, व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए, विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए, मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे, अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे, अपन हथी

थक आए पक्के सां, थक आए हर बंदना रखबार, थक परयो प्रभु दरबार, थक आए प्रभु की शाम, चार कुंठ दह दिस परमे, जोन अनेक बिखे प्रम आयो, आए अनेक जन्म प्रम शरणी, लख चौरासी जुना परमदे परमदेश से पाशाह तुम्हारे द्वारे आए हैं, आए अनेक जन्म

नानक राय सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। आज बेदियां दी कुल विच गुरु नानक ने आके जन्म लिया।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद तक जदों गुर प्रसाद तक जदों आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी समाध लग गई। आवाज आई ऐ नानक की कर रहे हैं ता गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया

ते उधर कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। ते भाई जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी भरोसे वाली सी कहन लगी इवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डुब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया दो नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण, दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

गुरु शब्द दी गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ़ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जेड़े सन ओ नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कोई उहदे नाल क्योंकि कहंदे हन साखी दे विच के सुदामा गरीब सी उहदे कोल चावल बन्ने होए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करदे। भाई साहब कहंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता। दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता। तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां। चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते ते भाई साहब फरमान कर

घट है न बड है न घट बड होता है। जमी जमान के मिखे समस्त एक जोत है न घट है न बड है न घट बड होता है। नहन है न बन है समान।

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली बात कहूं अश्व होए के बह बेग ऐसे कथो मैं न आऊं कथो तो है कैसे कहूं न आऊं कथो तो है कैसे कथो

ढाई गज गदहा बबूत धारी गिद्धुआ मसान बस करो ही करत है खूक मल तारी गज गदहा बबूत धारी गिद्धुआ मसान बस करो ही करत है घुमट बासी लगे डोल उदासी मोर तरवरम सुदीन मान सदे ही मरत है घुमट बासी लगे डोल उदासी उगु मट बासी लगे डोलत अदासी मृग त्रिवर सदीन मोन सद ही मरत है।